0: सुनो 91.7 FM कदर्स फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो सुनो
1: सुनो सुनो अरे सुनो सुनो